0: ठीक है आदि।
1: कोई बात नहीं,
0: अरे कोई काफी इसमें कर दिया तो नहीं शो।
1: We found a patient. Where would the patient
0: have? I'll come in.